अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

मैनू जानी ना तिला बौकर बन के हूं जदेऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पक्षियां दी झल नहीं।

तेरा हुण तख्त हिला देना जेने तू तख्त ते चढ़ बैठे ओ कुरनावी लबांगे जिस दे विच जा वड़ बैठे मैं।

असां कदे जोश विच आके अपना होश नहीं खोया, असी अग अंदर बाल दे आ, कदे आक्रोश नहीं खोया। हुण होणा जो तू वेखी मैं ता घमसान दा।

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

मुहब्बतें और भी बढ़ती है, बिछड़ जाने से। मुहब्बतें और भी बढ़ती है, बिछड़ जाने से।

0: उसमें शामिल रहना।
1: वाह जी,
0: तेरे जाने से बिखर जाएगी दुनिया मेरी, तेरे जाने से बिखर जाएगी दुनिया मेरी।

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात